भक्तजनों, हम आज आपको कांवर की महता सुनाते हैं। एक बार भगवान परशुराम अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता रेणुका जी का शीश काट देते हैं। इस पाप से बचने के लिए वो उपाय खोजते हैं। नारद जी के कहने पर परशुराम जी भगवान शिव की उपासना करके हरिद्वार से पावन गंगा का जल कांवर द्वारा लाकर शिव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उसी चरणामृत को लेकर अपनी माता के मृत शरीर पर डाल देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रेणुका जी को जीवन दान मिल जाता है। ऐसे हैं करुणाधारी भोलेनाथ। तो आइए आनंद लीजिए इस भजन का।

आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा, शर्त क्या है? केवट ने कहा, प्रभु पहले अनुमति दें, मैं आपके चरण पखार दूं। मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो उसने अहिल्या नारी का रूप ले लिया। अगर मेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्रभु मुस्कुराए, केवट की चतुरता समझ गए, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे।

भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, आज तो सेवा का अवसर मिला है,

0: gezang van Alka Yagnik uit de film Raja Hindustani. En dit was dus de female version, want er is ook een male version van. Uit de film Pyar To Hona Hi Tha gaan we luisteren naar Jab Kisi Ki Taraf.
1: Kisi se pyar kiya hai?
2: Haan, ek ladki, bilkul tumhari jaisi. Bahut sundar, bahut bholi, aur thodi pagal bhi. लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है.
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना. जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है. और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है. अब तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं. वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुज

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्तख यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश का बड़ा भाई, लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश, शारदा महेश, इन लोगों के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। मार्सन से श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश का बड़ा भाई, लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन देंसदख हालफद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फ्रसोर्खिंग परिवार महेश के दुख में शामिल है।

अरिजीत सिंह। हाँ, अरिजीत सिंह दिल जुनून बैंड के साथ, और ये उजाला रेडियो है, उजाला पेंटेनल इंफॉर्मेशन के लिए।

0: And inderdaad.
1: Watch this.
0: फिल्म आराधना का गीत फिर से सजाए गए एकदम से रीस्टाइल बाय शान एंड स्टाइल भाई उजाला रेडियो है ये निखावत चेकन मैं सुनिधि चौहान एंड हाजी स्प्रिंगर.

Shaked Senya, Sunidhi Chauhan, Haji Springwear from Rascals. Ujala Burnt NL हम लोगों का वेबसाइट है. फॉर इंफॉर्मेशन तू जाने हैं तो.

चला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई, लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश, शारदा महेश, इन लोगों के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है, सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। मार्सन से श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई, लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन देंसदख हल्फद्री किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 205 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टरडम से परिवार सुखराज महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और विधवा हिल्दा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार 6 लड़कन के मामा 3 पतो और 3 दामाद के ममवा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टरडम से विधवा हिल्दा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और बहन विधवा हिल्दा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार 6 लड़कन के मामा 3 पतो और 3 दामाद के ममवा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया ये कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन दिनसडख हल्फ द्री किए जाएंगे वैसखार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 2 105 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। आम्स्टरडम से मानी महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान मनी महेश का बड़ा भाई नौफा का बड़कू सिखमंद का दादा आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। परिवार मनी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान मनी महेश का बड़ा भाई नौफा का बड़कू सिखमंद का दादा आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान मनी महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन देंसदाह हालफ द्री किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार है। होफ दौरप से हृदय महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत हृदय महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बांगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था होफ दौरप से रुदी महेश और नैन्सी बांगोत बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत हृदय महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बांगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन दिन्स दाह हालफदरी किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेर वैक 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फरजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में हार्लेम से परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल के आयु में निखन जीवन तक यार औत श्रीमान सुभाष गोली के मौसी श्रीमती रेशमा सुरुजबली के मौसी आसास अश्विन और अरविन के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खस्थाइस जैत में हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 79 साल के आयु में निखन जीवन तक यार औत श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सूरजबली के मौसी आसास अश्विन और अरविन के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्थाइस में हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्टगार्ड के मुर्दालय ओकमेरवेग 275 अमस्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 5 बजे वुंसदखांस्टांद फेफ उर किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रीमाटोरियम ओकमेरवेग 275 अमस्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एटफार्ट फुरजोरखिंग समस्त परिवार गोली परिवार सुधवा और परिवार बुद्धों के दुख में शामिल है।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। उमर कैद फिल्म का नाम और आप गीत को सुने मुकेश जी एंड लता जी से। ये उजाला रेडियो है।

और इतना है तुमसे प्यार मुझे, फिल्म सूरज का गीत और गाने वाले मोहम्मद रफी के साथ में सुमन कल्याणपुर।

बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। गीत आप सुने मोहम्मद रफी अंदर लता जी से, फिल्म स्वीटहार्ट से, और ये उजाला रेडियो है। एक और गीत आप सुनेंगे अब, आशा जी की आवाज में होंगे।

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the. लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए. कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं.

0: म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है। आप सुन रहे थे उजाला रेडियो पर ये शानदार से नगमा जो कि पेश किए गए हैं।
1: दिस इज समथिंग

0: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति लरकन चित्रा और आनंद महेश के पिता श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना, दो लड़कन के आजा। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है, सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। आम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति लरकन चित्रा और आनंद महेश के पिता श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन हलफद्री किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में।

सुन के रहने वाले परिवार हरि प्रसाद धून महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तख यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइश

जो था। मार्सन से परिवार हरिप्रसाद दोन महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरिप्रसाद दोन महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन दिनसदाख हाल्फ द्री किए जाएंगे। वैस्खार्द क्रीमाटोरियम ओस्टडॉर्प ओकमेरवेख 275 पर।

और मृत्यु समाचार सुनिए अम्स्टर्डम से। समस्त परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतो के मामा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना चार लड़कन के पर नाना और पर आजा। अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टर्डम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार अशोक उषा जेरल्ड सीना सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद और दो पतो के मामा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और चार लड़कन के पर नाना और पर आजा। अम्स्टर्डम में श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार दिन में 2:30 बजे मोरखन दिनसदख हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार ज्वानेनबर्ग से परिवार योहान महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद दियाना और मर्लिन के ददवा ससुर जीना और राफायल के नाना जेलानो जेनाया और जेफानो के आजा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। ज्वानेनबर्ग से परिवार योहान महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार और श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद दियाना और मर्लिन के ददवा ससुर जीना और राफायल के नाना जेलानो जेनाया और जेफानो के आजा अम्स्टरडम में श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 2:30 बजे मोरखन दिनसदक हालफ द्री किए जाएंगे वैसखार्द क्रिमाटोरियम अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में।

अम्स्टरडम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्तियार और शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टरडम में श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्तियार और शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टरडम में श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया ये कल मंगलवार दिन में 2:30 बजे मोरखन दिनसदाग हल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम अम्स्टरडम ओस्टडोर्प ओक मेरवेख में।

पर गजाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर नीलन और शिरेन के नाना, संध्या और चांदनी के ननवा ससुर जेलेन, निजे और जिया के परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। सुरीनाम इलाका सरामाका के पैदाइशी था। अलमेर से परिवार गजाधर महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत बेटी श्रीमती चित्रा गयाधर महेश का पिता, दामाद श्रीमान शांति गयाधर का ससुर नीलन और शिरेन के नाना, संध्या और चांदनी के ननवा ससुर जेलेन, निजे और जिया के परनाना, अम्स्टरडम में श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार दिन में 2:30 बजे मुरखन देंसदाख हालफद्री किए जाएंगे। वैस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्थ फ्रिजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार। नीवखैन से परिवार घिसे शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल की आयु में नीखनन फैफ्तखियार औत मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसाई के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना। नीवखैन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घेसाई की मृत्यु नीवखैन के सेंट एंटोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। नीवखैन से परिवार घेसाई शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में नीखनन फैफ्तखियार औत मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसई के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना। नीवखैन का रहने वाला श्रीमान बिरजानंद घिसाई की मृत्यु नीवखैन के हॉस्पिटल में हो गई है। बिरजू के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका कल मंगलवार की रात में 7 बजे से 8 बजे तक एथफर सेंट्रम दालवेक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओफर फैक्ट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के सुबह 10:30 बजे वोंसदा खानस्तांद हल्फ एल्फ किए जाएंगे दालवेक क्रीमाटोरियम फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओफर फैक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुरजोरखिंग परिवार घिसाए परिवार शिव गोविंद और बाकी परिवारों के दुख में शामिल।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्णदत्त राम सुख पांडे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 86 साल की आयु में जसन तख्त यार और भाई श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडे का छोटा भाई भौजी श्रीमती बालवंती रामसुख पांडे का देवर, आठ लड़कन के काका और ककवा ससुर, सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर, ननवा ससुर, पर आजा और पर नाना, रोटरडम का पैल का रहने वाला श्री कृष्णदेव रामसुख पांडे की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। अम्स्टरडम से श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडे और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिवार को 86 साल की आयु में जसन तख्त यार औत भाई श्री पंडित कृष्णदत्त रामसुख पांडे का छोटा भाई भौजी श्रीमती बलवंती रामसुख पांडे का देवर, आठ लड़कन के काका और ककवा ससुर और सभी लड़कन के आजा नाना, अजवा ससुर, ननवा ससुर, पर आजा और पर नाना, रोटरडम का पैल का रहने वाला श्रीमान कृष्णदेव रामसुख पांडे की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम देला के मुर्दालय द बुजम, एटफर्ड सेंट्रम देला द बुजम खुदसेई के मुर्दालय में, और यह है रोटरडम में। अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले 29 तारीख जुलाई को, आने वाले बुध 29 तारीख जुलाई सुबह 11:30 बजे हाल्फ ट्वाल्फ दाह क्रिया को किए जाएंगे। देला ओकनबर्ग क्रेमाटोरियम, ओकनबर्ग स्ट्रैट 21 देन हाग में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-12-31 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार रामसुख पांडे के दुख में शामिल है।

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। गीत आप सुने तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम कैप्टन किशोर और ये उजाला रेडियो है।

मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन सी जल में, ये कोई जाने ना। गीत आप सुने मुकेश जी की आवाज में और फिल्म अनोखी रात से निकाले गए।

ये उजाला रेडियो है, यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। हरे सुनने वालों को आदाब अर्ज और नमस्कार, मैं हूँ आपका हमसफर निशा। एक के बाद एक नगमे हमने धागों में पिरोकर लाए हैं आपको सुनवाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि

आप इस घड़ी को बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिंदगी जिंदगी कितनी भी मशरूफ क्यों ना हो, कुछ लोगों से अकीदत मतलब लगाओ, कुछ लोगों से अकीदत का ऐसा रिश्ता होता है कि वो यादों और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मौला मेरे मौला सुफियाना कलाम पेश है।

मौला मेरे मौला, महान गायक अनवर की आवाज़ में पेश था सुफियाना कलाम। भजन सुनवाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, राम कहाँ।

प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग रूप को निखार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरे बाकी उम्र सवार दे, कभी ने की भी उसकी जी में गर आ जाए है मुझ

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान शायर मिर्ज़ा गालिब का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। यकीन मानो कोई मजबूरियां नहीं होते, लोग आदतन वफा नहीं करते। हैरान हूँ ऐ सनम कि तुझे और क्या कहूँ, दिलबर कहूँ कि दोस्त कहूँ।

मन्ना डे की सुरीली आवाज में पेश थी ये गजल। मौसिकी थी मौसिकार मुरली मनोहर स्वरूप की। एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए।

डट हुई है यार को मेहमान किए हुए। बेगम इकबाल बानो से पेश थी ये गजल। तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता है, जरा सी देर ही सही बेमिसाल होता है। खुमार गम है महकती फिजा में जीते हैं।

दिल छू लेने वाले गजल पेश थी जगजीत सिंह की आवाज़ और ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी कलाम महान शायर गुलजार की। अब हम आपके खिदमत में हल्के हल्के मीठी धुनों में नगमे सुनवाएंगे, जैसी कि ये नगमा।

गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे।

सदाबहार सॉन्ग पेश था, गायिकाओं थे लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी। ये गीत अदाकारा नलिनी जयवंत पर फिल्माया गया था। संगीत से सवारे थे श्री रामचंद्र। इसी अंदाज में सुनवाते हैं रफी साहब से अगला गीत।

चार के बराबर ये दो तांग वाला फिल्म छोटी बहन में से ये गीत पेश था। शंकर जयकिशन का संगीत और ये गीत महमूद पर फिल्माया गया था। एक बार फिर रफी साहिब से सुनवाते हैं अगला गीत, साथ में है लता मंगेशकर।

मोहब्बत भरे अंदाज में पेश था ये दो गाना। फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का गीत जो नेखनफ में रिलीज हुआ था और संगीतकार चित्रगुप्त संगीत से सवारे थे। इस रोमानी नगमा सुनवाने के बाद और कौन सा नगमा आप सुनना पसंद करोगे? हाँ तो लीजिए, इसी अंदाज में ये दो गाना पेश है।

खूबसूरत अंदाज में दिल छू लेने वाले दो गाना पेश था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अपने ख्यालों में डूबे रहे ये डुएट से

आप सभी सुनने वालों को निशा फिल्मी दुनिया में इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। इस हिस्से के प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में कोशिश है मेरी उन महान फनकारों के बारे में रोशनी डालने को जिन्होंने अपने फन से, अपनी कला से हम सब के लिए खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, जिन्होंने अपने काबिलियत से फिल्मी दुनिया की ऐतिहासिक किताबों की पन्नों पर उनका नाम सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं। उन सब में गिनती है महान संगीतकार ओपी नैयर। ओपी नैयर जिसके संगीत में कुछ खासियत है, एक अलग सी पहचान है। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना कि ओपी नैयर नेक दिन सेवन फेयर तक में लाहौर से अमृतसर चले गए, लाहौर जो अब पाकिस्तान के हिस्से में गिनती है। बंटवारे के बाद उनके वालदैन अपने परिवार के साथ अमृतसर में रहते थे। हमने ये भी बतलाई थी कि ओपी नैयर को सिर्फ संगीत में दिलचस्पी था, संगीत के दुनिया में वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इस सपना को पूरा करने के लिए उसे अमृतसर से बॉम्बे जाना था। उसने ये सब सोचकर बॉम्बे का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी से बॉम्बे चले गए अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे में कितना मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा, एक गीत के बाद बयां करेंगे। नगमे जो आप प्रोग्राम के दौरान सुनेंगे सब ओपी नैयर के सजाए नगमे हैं।

राकेश की आवाज और ओपी नैयर की संगीत पर पेश था ये गीत। तो जैसे मैंने गीत से पहले कहा, चल पड़ा था ओपी नैयर अकेले बॉम्बे अपना तकदीर आजमाने। बॉम्बे स्टेशन पर जब कदम रखा तो किस तरफ, पर इतना उसे अपने आप पर यकीन था कि उसे संगीत की दुनिया में कदम रखना है। शुरू शुरू में ओपी नैयर ने दर बदर भटकता रहा, फिल्म स्टूडियो की आसपास फिरता रहा। फिल्म में उसे अदाकारी करने का मौका मिलता तो वो भी उसे

जोर था। फिर एक दिन अचानक उसे अपना बचपन का दोस्त कृष्ण कुमार से मुलाकात हुई। कृष्ण कुमार उन दिनों फिल्म कनीज तैयार कर रहा था, जिस फिल्म में मौसकार गुलाम हैदर और हंसराज बहल संगीत सजा रहे थे। कृष्ण कुमार ने ओमकर प्रसाद से कहा, अब तुम्हारे भटकने का दिन खत्म हो गया, मैं तुम्हें दो महान संगीतकारों से तारुफ कराएंगे। तो इसी तरह ओमकर प्रसाद को मौका मिला फिल्म कनीज में ऑर्केस्ट्रा के साथ धुन बजाने को। फिल्म कनीज बनकर जब दिखाई गई पर्दे पर तो दर्शक फिल्म को नहीं पसंद किया। ओमकर प्रसाद मायूस होकर रह गए। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे।

किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि फिल्म कनीज की नाकामयाबी के बाद ओमकर प्रसाद परेशान रहता था, बहुत मायूस था। ऐसे में उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। ओमकर प्रसाद की परेशानी की वजह सुनकर गीता दत्त ने कहा गुरु दत्त से मिलने को। गुरु दत्त फिल्म बास की शूटिंग कर रहा था। इसी तरह ओपी को एक बार फिर मौका मिला इस फिल्म में संगीत से मदद करने को। पर इससे पहले ओपी को दो फिल्मों में संगीत सजाने का मौका मिला था, फिल्म आसमान और छम छमा छम। पर ये फिल्में आवाम नहीं पसंद किया। आइए मिलकर सुने ओपी नायर का पहला सजाए गीत।

फिल्म आसमां में से आपने अभी ये गीत सुना। गाने वाली थी गीता दत्त। इस गीत को ओपी नैयर ने सजाए है। ये ओपी नैयर का पहला सजाया गीत है, पर दर्शक ना इस फिल्म को और ना ओपी नैयर की सजाए संगीत पसंद किया। सुनहरे दौर का प्रसिद्ध पेशकश हिदायतकार और अदाकार गुरु दत्त फिल्म बाज तैयार कर रहा था। गीता दत्त की बात मानकर ओपी नैयर ने जब गुरु दत्त से मिला तो उसने इनकार नहीं किया और पूरा यकीन के साथ गुरु दत्त ओपी नैयर को मौका दिया फिल्म बास के नगमे सजाने को। आइए हम आपको फिल्म बास का गीत सुनाते हैं, फिर हम कहानी आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म बास का गीत आपने अभी गीता दत्त की आवाज में सुना। इस फिल्म के सभी गाने ओपी नैयर ने सजाए हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद फिल्म बास सिनेमा घरों में चला नहीं। एक बार फिर ओपी नैयर मायूस हो गया, अब बेरोजगार था। इसी दौरान उनका शादी भी हो गया। कब तलक वो अपने बीवी को झूठी तसल्ली दिलाते? तो उसने फैसला किया अमृतसर वापस जाने को। पर वापस जाने से पहले ओपी गुरुदत्त से पैसे के बारे में जिक्र किया। फिल्म बास दर्शक नहीं पसंद किए, पर गुरुदत्त ओपी नैयर की संगीत से खुश था और उसे फिल्म आर पार में दोबारा मौका दिया संगीत सजाने को। हम आपको गीता दत्त की आवाज और ओपी नैयर की सजाए संगीत सुनाते हैं।

शमशाद बेगम की आवाज और ओपी नैयर का भड़कता संगीत से संगीत के दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ। फिल्म आर पार के बाद ओपी नैयर पीछे मुड़कर देखा नहीं, उनके संगीत से एक नया दौर शुरू हुआ। संगीत में नयापन था, नजाकत था, ताजगी था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे प्रोड्यूसर्स अब उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। ओपी नैयर, शमशाद बेगम, गीता दत्त, मोहम्मद रफी या आशा भोसले को ध्यान में रखकर संगीत सजाते थे। आशा भोसले आज जिस मकाम पर है, बुलंदियों पर है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाथ ओपी नैयर का है। आइए सुने एक साथ दो महान फनकार की खूबी।

ओपी नैयर की संगीत और आशा भोसले की आवाज तहलका मचा दिया था। कैसे हम भूल सकते हैं नासिर हुसैन की पेशकश तुमसा नहीं देखा और फिर वही दिल लाया हूं की संगीत। ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर ओपी नैयर की कुछ तराने मतलब सॉन्ग्स रेडियो के जरिए सुनाने की मना कर दिया था। वजह ये थे कि संगीत में ज्यादा विलायती का असर था। ओपी नैयर अपने असूलों पर अटल थे। जब वो महसूस किया कि अब यही वक्त है बॉम्बे से चले जाने को, तो वो अपने बीवी बच्चे के साथ बॉम्बे छोड़ दिया। ओपी नैयर के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनकी बीवी सरोज मोहिनी नैयर भी गीत लिखती थी, जैसे ये गीत।

प्रीतम आन मिलो, इस गीत का तर्ज सरोज मोहिनी नैयर ने लिखा और ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। ओपी नैयर अपने बीवी बच्चों से अलग एक दोस्त के साथ विरार में रहता था। महान संगीतकार ओपी नैयर 28 जनवरी 2005 में दुनिया को अलविदा किया। उनके संगीत में आज भी वही ताजगी है, दिल में एक लहर से उठती है। जब तलक कायनात रहेगी, ओपी नैयर की संगीत फजा में लहराते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक ऐसे ही महान फनकार के बारे में बयां करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान प्रसिद्ध मौसिकार ओपी नैयर के बारे में बयां किया। प्रोग्राम सबरंग आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं रफी साहब से ये नगमा।

फिल्म कन्यादान में से ये नगमा पेश था हसरत जयपुरी का बोल और शंकर जयकिशन की मौसिकी थी। दोस्त तो बहुत थे सफरे जिंदगी में, रफ्ता रफ्ता छोड़ते गए हाले गरीबी देख कर। ये सोने की दुनिया, ये चांदी की दुनिया, यहाँ पर गरीबों की औकात क्या है।

गरीबों की दुनिया, ये चांदी की दुनिया, रोंते खड़े हो जाते हैं ऐसे नगमे सुनकर, क्यों ना हो, क्योंकि इस तर्ज को महान कवि भारत व्यास ने लिखे हैं और हेमंत कुमार ने अपनी आवाज से गीत में चार चांद लगाए हैं। कुछ हार गई तकदीर, कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ छोड़ गए अपने, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो।

फिल्म होली आयरे में से ये गीत लिया है कल्याण जी आनंद जी का संगीत रचना और इंदिवार का लिखा तर्ज था। अब आइए सुने मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना।

अमर गीत पेश था वसंत देसाई की मौसिकी और कवि भारत व्यास का गीत रचना था। अगला दो गाना पेश है, गाने वाले हैं सुरीली आवाजों में आशा भोसले और रफी साहब।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। कभी याद किया वफा को तेरी, कभी आए जफा याद, रही कश्मकश यही यही रात भर हाल रहा, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती।

छू लेने वाले नगमा पेश था राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत बोल, आनंद बख्शी का आवाज थी मुकेश जी की। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।

0: फिल्म गुमराह का नगमा पेश था रवि की मौसिकी और साहिर लुधियानवी का लिखा तर्ज आवाज थी महेंद्र कपूर की। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुड्डटे गुजरे पर अब तक वो ठिकाना याद है।
1: बोले

फिर गीत पेश था कानों में रस घोलने वाली आवासी आशा भोसले की। अब लीजिए दिल लुभाने आ रहे हैं मीठी आवाज में मोहम्मद रफी साहब।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की, संगीत से सवारे थे संगीतकार रवि और तर्ज को लिखे थे साहिद लुधियानवी। एक बार फिर रफी साहब से पेश है अगला गीत और साथ दे रही है मीठी सुर में सुमन कल्याणपुर।

0: खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। संगीतकार शंकर जयकिशन का संगीत, गीतकार थे हसरत जयपुरी। अगला गीत आइए सुने, मन्ना दे से वो क्या सुनाएंगे, लीजिए पेश है और मजे लीजिए।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उमंग भरा गीत पेश था राहुल देव बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा तर्स। इस भरकता गीत के बाद क्या पेश करूं? हाँ, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं, झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, और सच कहूँ तो तेरे सिवाय कुछ भी नहीं, तुम बिन अब तो रहा नहीं जाए।

सदाबहार नगमा पेश था मौसिकार राजेश रोशन की मौसिकी, आवाज थी लता मंगेशकर की। अगला दो गाना सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अमर गीत पेश था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की सुरीली आवाजों में। इसी रोमानी अंदाज में आप लुत्फ उठाइए ये नगमा से।

0: क्या नशा नशा सा है, बोलिए रब बोलिए सब सुना सुना सा है।
1: कमाल का नगमा आपने अभी रफी साहेब से सुना, आज भी इन नगमों में वही ताजगी है। अब हम सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और मीना कपूर की आवाजों में ये दो गाना।
0: सेला ओ सेला ओ सेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला।
2: जॉनी को

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और मीना कपूर। मीना कपूर जो संगीतकार अनिल विश्वास की बीवी थी। अपनी मीठी ख्यालों में डूबी रहे इस गीत के साथ ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सब रंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला पिंडनेल, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर। जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।